0: पानी हम मिलकर के बचाएं,
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्ट तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब रहता नहीं कि कितने गम खरीदे हैं खुशियां समझकर, कितने लम्हे बेच दिए मामूली समझकर। ये मन भारी सा रहता है और जेब हल्की हल्की, कब कमाएंगे उतना कि जितनी खर्च हो रही जिंदगी। ये खूबसूरत लाइनें हमें लिखकर भेजी हैं सीधा हल्द्वानी उत्तराखंड से कृतिका जोशी, रोहित जोशी और राघव जोशी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। और चलिए अब अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं जो कि सीधा आया है हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से। लिखते हैं, मॉनसून ने दस्तक दे दी है, मौसम भी हुआ खुशगवार, नाज बहना का इस्तकबाल करने तैयार है अनीजा परिवार। क्या बात है, दिलकश होंगी बातें, कुछ मस्ती और नगमे होंगे बाकमाल। पिंजरा ईमेल का खुलने से पहले होगा एक उम्दा सा सवाल, शिद्दत से करते मोहब्बत गोल्ड से दिल में आदर सत्कार, सिर्फ नगमों गीतों की बात नहीं यहाँ मिलता प्यार बेशुमार। ईमेल की बारिश और मॉनसून की बारिश से सुर सजेंगे, माउस पे रख लिया हाथ नाज बहना ने तो अब गीत बजेंगे। लाजवाब होती पेशकश, होता वखरा बहन का स्टाइल, नाज बहना आपकी मोहब्बतों से हर चेहरे पे छाए स्माइल। क्या बात है, सतीश अनेजा जी का ये मैसेज आया है विमला अनेजा जी के साथ सीधा चंडीगढ़ सिटी से। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर बोल दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मेरी तारीफ ही लिखें और तभी आपके ईमेल्स शामिल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस कुछ भी अच्छा सा लिखकर भेज दीजिए, मैं आपका ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज जरूर जरूर जरूर शामिल करूंगी, ये मेरी पूरी कोशिश है। चलिए उससे पहले आपको आज का सवाल याद दिला देती हूँ। मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सा गाना है जिसे गाते हुए ओरिजिनैलिटी को बरकरार रखने के लिए, ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए किशोर दाने चबाए थे एक नहीं बल्कि दर्जनों बनारसी पान, कौन सा है वो गाना, जल्दी से लिखकर भेजिए। वैसे आप लिखकर भेज रहे हैं और प्रोग्राम जब खत्म होने वाला होगा ना तब वो सभी नाम में शामिल भी करूंगी, चिंता मत कीजिएगा। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं। सत प्रकाश सनूठिया जी ने लिखकर भेजा है रोहिणी दिल्ली से कि जिंदगी एक बहती नदी है, बस बहते जाना है। जिंदगी एक बहती नदी है, बस बहते जाना है। कभी मिलेगी धूप यहाँ, कभी छांव को पाना है। हर मोड़ पर नए मुसाफिर, नई कहानियां होंगी। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे कदम बढ़ाना है। क्या बात है, जोश से लबरेज ये लाइनें एसपी गोयल साहब ने लिखी हैं, सतप्रकाश सनूठिया, जैसा कि मैंने पहले बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। चलिए अगला मैसेज हम शामिल करते हैं जल्दी से। मल्होत्रा टीडी, टीडी मल्होत्रा इनका नाम है, सेक्टर 67 सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखा है ये मैसेज। ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप इनके साथ शामिल हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत गाने की इन्होंने फरमाया।

आजमाइश लिखकर भेजी है। चलिए अगला मैसेज हम किसका शामिल करेंगे। आपको पता है तुम्हारी और हमारी मुस्कान में फर्क क्या है? तुम खुश होकर मुस्कुराते हो तो हम तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। ये खूबसूरत मैसेज लिखकर भेजा है बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल और कमला रानी ने उत्तम नगर नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैसेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, जिनमें से मेरे सामने खुल चुका है रामगढ़ कैंट से आया हुआ मैसेज। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब जी ने लिखा है ये मैसेज और एक बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश भी हमसे की है इन्होंने। और एक और मैसेज है परवेज आलम जी का, लिख रहे हैं कि हमारा गाना जरूर आप शामिल कर लीजिए, ग्राम बलमी सिरसिया जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार से ये मैसेज आया है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। तो चलिए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, चूंकि घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है तो अब मुझे बताना होगा आपको आज के सवाल का जवाब भी, साथ ही शामिल करने होंगे वो सभी नाम भी जिन्होंने भेजा होगा आज के सवाल का सही जवाब। तो जनाब किशोर दाने एक नहीं बल्कि एक दर्जन बनारसी पान स्टूडियो में मंगवाए थे जब वो रिकॉर्डिंग करने पहुंचे थे फिल्म डॉन के बेहद मशहूर गाने को। जी हाँ, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, यही था वो गाना। गाने के मूड और उसकी लिरिक्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड होना चाहते थे किशोरदा और ऐसा उन्होंने सचमुच कर दिखाया था। फिल्म थी साल 1978 में आई डॉन, जिसके लिए गाना लिखा भी नहीं गया था। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने गीतकार अनजान की कलम से निकले इस गाने को असल में साल 1973 में आई फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया था, लेकिन देवानंद जी के एतराज के बाद ये गाना उस फिल्म में नहीं लिया गया। और फिर ठीक 5 साल बाद मनोज कुमार जी के सुझाव पर इस गाने को डॉन फिल्म में जगह मिली और उसके बाद तो ये गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। बिल्कुल यही और सही बोल किस किस ने लिखकर भेजे हैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती बल्ली मारन से, रामकुमार पलवल से और राम ऑप्टिकल पलवल, शायद यही इन्होंने अपना नाम लिखा है। इसके अलावा मालियान सरधाना मेरठ, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन के साथ इन्होंने भी भेजा आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और कहां कहां से आया आज के सवाल का जवाब जल्दी से देख लेते हैं। एक मैसेज मुझे बड़ा अच्छा नजर आया है, लिखा है कि जिसका जैसा चरित्र होता है ना उसका वैसा ही मित्र होता है, शुद्धता होती है विचारों में तो आदमी पवित्र हो जाता है, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है जयराम खोरवाल जी ने, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल के साथ दीपांशु खोरवाल भी इसमें शामिल है और एक फरमाइशी गीत भी लिखकर इन्होंने भेज दिया है। और चलिए जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि किस किस ने दिया आज के सवाल का सही जवाब, वो मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि आपके ईमेल्स खो गए हैं मुझसे, उसके लिए माफी चाहती हूँ। दीपू, विक्की, पूनाराम, यश, आराध्या न्यू दिल्ली रघुबीर नगर से इन्होंने भी फरमाइशी गीत लिखकर भेज दिया है। और सवाल का जवाब जी हाँ, जयराम खोरवाल जी ने भी लिखकर भेज दिया है, बाबन कुमार दास जी ने भी लिखकर भेज दिया है, परवीन कुमार विलेज रोनिया खीजर सराई गया बिहार से आया है ये जवाब। और इसके साथ ही आ गया है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का भी जवाब, साथ ही अपनी फरमाइश। और कस्बा गुन्नौर यूपी से आया है ये मैसेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनु बरजात्या जी ने बिल्कुल अभी अभी मैसेज लिखा है और लिख रही हैं कि आई हैव बीन मिसिंग यू डियर नाज, वेलकम वेलकम, आई मिस यू टू मैम, हैप्पी चॉकलेट डे, सेंडिंग चॉकलेट्स फॉर यू। और लिखा है कि एक सहेली हो जिंदगी में ऐसी जिससे हर रोज बांट सको तुम हर राज, जो आईने की तरह सच बोले और माँ की तरह डांट भी सके, रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना, फिर एक मिनट में हंस के गले लग जाना, सहेली के बिना ये हुनर कहाँ, माफी मांगे बिना माफ कर जाना, खून के

0: रिश्ते तो खुदा बनाता है, पर सहेली का रिश्ता दुआ से बनता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और जैसे कि मैं कहती हूँ, मैं हूँ नाज, आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त, यानी आपकी पक्की वाली सहेली भी हूँ मैं। शमशुल खान, अनुराज बेनारा और अनु परजात्या जी ने ये खूबसूरत मैसेज लिखा मुंबई से। और चलिए अब सुने हम वो आइकॉनिक सॉन्ग जो था आज के सवाल का जवाब। है हमारे पास एक दो मिनट और, तो हम और मैसेजेस शामिल कर सकते हैं। राजस्थान से नासिर लजवान, माहिर लजवान, आरिफ अली, मेहर नूर ने भी भेज दिया है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और बबन कुमार दास जी का भी आ गया है बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ ही नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से अपनी फरमाइश लिखकर इन्होंने भेजी है। और किस किस का आया है सही जवाब, मैं जल्दी से ढूंढ रही हूँ ताकि आप मुझसे नाराज ना हो। आफ्ताब अंसारी जी का मैसेज आया है और सही जवाब के साथ साथ अपनी फरमाइश भी लिखकर भेजी है। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी इनके साथ शामिल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिन्मय महतो जी ने भी कर दिया है मैसेज और लिख रहे हैं कि नमस्कार दीदी, जिनकी नजर लक्ष्य पर होती है वो हर पल खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कदमा जमशेदपुर, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल के साथ और आज के सवाल का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है। और हम सुने अगला गाना, उससे पहले चलिए एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। बबलेश पवार जी का है ये मैसेज, जिसे मैं शायद पहले शामिल कर चुकी हूं या नहीं, कोई बात नहीं। आज के सवाल का सही जवाब इन्होंने शायद अभी दोबारा लिखकर भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फूल गवाह है कि अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं, बड़े बेबस होते हैं वो लोग जो झूठे नहीं होते, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच भी नहीं बोलते। एहसासों की नमी का होना जरूरी है, हर रिश्ते में रेत सूखी हो तो हाथों से फिसल ही जाती है। बहुत खूबसूरत बात, सईद अब्बासी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। चलिए अब घड़ी जोर जोर से कह रही है कि भाई सुना दो वो गाना जो कि है इतना खूबसूरत, और उस पर थोड़े बहुत ठुमके लगाना तो बनता ही है। तो चलिए खड़े हो जाइए जहां भी बैठे हैं और चबाइए पान अगर आसपास है तो, और मस्त हो जाइए इस गाने में। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 11:10 पर, प्रोग्राम होगा तस्वीर।
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और खनिज तथा इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners.
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का। आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ

चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार

Namaskar, suswagatam, assalamualaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel on 100.1 megahertz aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt time hua hai 11:11:30 and as you already know, ye samay hai sair sapate ka kyunki ye samay hai हमारी खास पेशकश तस्वीर का। और आज तस्वीर के कैनवस पर कहां के रंग बिखरने वाले हैं ये आप ही को गैस करना है और जल्दी से लिख भेजना है जगह का नाम विद ऑल प्यारी प्यारी बातें जो भी आप इस खूबसूरत जगह के बारे में जानते हैं। fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868868753 पर। और अब आपके लिए कुछ हिंट्स। हिमाचल प्रदेश का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन जहां बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल और वादियों की ताजी हवा आप महसूस करेंगे मेरे यानी नास के साथ। लिटिल ल्हासा ऑफ इंडिया, विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, चाहे जिस नाम से आप इस जगह को जाने, बट इन वन वर्ड Only heaven means swarg would be the best title for this place. सफर है लंबा, इसलिए बातों का सिलसिला रखेंगे थोड़ा छोटा और शुरू करेंगे सदाबहार गानों का कारवां इस बेहद खूबसूरत ट्रैक के साथ।

तो भाई बधाई के पात्र हैं आप कृष्ण कुमार गुप्ता जी और प्रकाश गोगिया जी, क्योंकि आप दोनों ने ही लिखकर भेजा बिल्कुल सही नाम, जिस शहर की तस्वीर से आज हम रूबरू हो रहे हैं, और जिन्होंने भी शिमला लिखकर भेजा है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती हो गई आपसे। मैंने आपको हिंट दिया था कि विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि शिमला तो नहीं है। जी हाँ, धर्मशाला है वो खूबसूरत जगह जो कि हिमाचल प्रदेश का सरताज भी कहा जाता है और शीतकालीन राजधानी यानी विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है यही शहर। तो कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में बसी ये बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है, और ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि असल में दो अलग अलग दुनियाओं का मेल है। नीचे लोअर धर्मशाला है तो ऊपर करीब 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा है मैक्लोडगंज, जिसे लिटिल ल्हासा या फिर मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, और जो तिब्बतियन कल्चर और बौद्ध गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। मौसम कौन सा बेस्ट है धर्मशाला आने के लिए वो हम जानेंगे जरूर। अगर ये सवाल आपके मन में है तो आपको बता दूं कि वैसे तो पूरे साल ही धर्मशाला का जो मौसम है वो बेहद सुहावना रहता है, लेकिन अगर आपको बर्फबारी को एंजॉय करना है तो आप आइए मार्च से जून के बीच, और अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बढ़िया स्नोफॉल तो धर्मशाला आपका स्वागत करता है दिसंबर से फरवरी के बीच। तो फिर चलिए धर्मशाला की ठंडी हवाओं को और करीब से महसूस करते हैं इस अगले तराने के साथ, और फिर जब वापस आएंगे तो जानेंगे धर्मशाला के अंदर की खूबसूरत डेस्टिनेशंस के बारे में।

तिब्बती प्रार्थना चक्रों की गूंज और मोमबत्तियों का वो धीमा उजाला, मैक्लोडगंज की हर एक गली ने जैसे दिल पर कोई जादू है कर डाला। भागसू के झरनों का वो गिरता पानी मन के हर मैल को धो देता है। इंसान अपनी सारी उलझने भूलकर इन वादियों में मानो खो सा जाता है। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच जब सूरज की किरणें छन कर आती हैं, तो सूखी पत्तियां भी पैरों के नीचे आकर एक मधुर संगीत सुनाती हैं। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, ये तो रूह को सुलाने का एक पालना है। खुदा ने फुर्सत से तराशा जिसे इस जमीन पर, उसका नाम धर्मशाला है। और अगर आप भी गवाह बनना चाहते हैं कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी का, तो रास्ता बेहद आसान है।

हवाई सफर के लिए गग्गल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन से आना चाहें तो पठानकोट सबसे नजदीकी और बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप टॉय ट्रेन या फिर टैक्सी ले सकते हैं धर्मशाला तक के लिए। बाय रोड अगर प्लान बने तो दिल्ली चंडीगढ़ से सीधी बसेस चलती हैं। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पकड़िए NH 503 का साथ और सीधा पहुंच जाइए। अंबाला, चंडीगढ़, कीरतपुर साहिब, ऊना और कांगड़ा होते हुए धर्मशाला।

रास्ते यहाँ के इतने खूबसूरत हैं कि आपको यकीनन इस सफर से प्यार हो ही जाएगा, जैसे इस अगले गाने में झलक रहा है। सुनिए और एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सफर धर्मशाला का मेरे यानी नाज के साथ।

0: जुबान है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जारी है तस्वीर जहां आप कर रहे हैं खूबसूरत धर्मशाला का सफर मेरे यानी नाज के साथ, और इस सफर को और मुकम्मल करने के लिए चलिए चलते हैं मैक्लोडगंज के विश्व प्रसिद्ध दलाई लामा मंदिर, जहां कदम रखते ही एक अलग तरह का सुकून आप महसूस करेंगे, और जो परम पावन दलाई लामा जी का निवास स्थान भी है। अंदर आप देखेंगे भगवान बुद्ध की 3 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा, और जरूर सैर कीजिएगा दलाई लामा जी के निजी मठ की भी, जिसका नाम है नामग्याल मठ। प्रेमिसेस के एंट्रेंस के ठीक पास में ही आप पाएंगे तिब्बत म्यूजियम भी, जहां तस्वीरों और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप तिब्बतियन हिस्ट्री से रूबरू हो सकते हैं। मंदिर के चारों ओर एक घुमावदार रास्ता है, जहां मंत्रोच्चारण और प्रार्थना चक्रों के साथ परिक्रमा करना मानसिक शांति पाने का एक सफल जरिया है। और फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ही अगला ट्रैक, जो भी जुड़ा है पर्वतों से, और उनके पीछे है चंबे द गांव। धर्मशाला से क्या है रिश्ता इस गांव का, जानेंगे जब लौट कर आएंगे।

धर्मशाला के ठीक ऊपर जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ आप देखते हैं वो हिस्सा है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के, और जिसके ठीक पीछे यानी दूसरी तरफ आपको नजर आएगी चंबा घाटी। जी हाँ, मशहूर ट्रैकिंग रूट इंद्रहार पास इन दोनों खूबसूरत जगहों को आपस में जोड़ता है, और जाहिर सी बात है कि इस गाने की शूटिंग भी यहीं यानी चंबा घाटी की खूबसूरत वादियों में ही हुई होगी। चलिए अब लौटते हैं धर्मशाला, जहां ठहरने के लिए आपको आपके बजट के हिसाब से आराम से होटल्स या फिर होम स्टे मिल जाएगा। शहर के शोर शराबे से दूर बिल्कुल पहाड़ों की गोद में अगर आप रात की नींद से जागना चाहते हैं तो धर्मकोट या फिर नड्डी गांव को चुनिए, जहां सुबह की चाय जब पहाड़ों के पीछे से निकलते सूरज को देखते हुए आप पियेंगे ना, तो 101% इस सजेशन के लिए मुझे थैंक यू तो जरूर कहेंगे। आगे बढ़ें धर्मशाला के इस सफर पर, उससे पहले आइए ये गाना तो सुनते चलें।

कांगड़ा घाटी के साउथ में लगभग 30 किलोमीटर दूर और धर्मशाला से लगभग 56 किलोमीटर दूर आप पहुंचेंगे ज्वालाजी मंदिर, जहां साल भर तीर्थयात्रियों का जमावड़ा रहता है। माँ ज्वाला देवी को समर्पित 9 अनंत ज्वालाएं यहां पर जलती हैं। और खास बात एक ये भी है कि यहां इन ज्वालाओं से अलग कोई प्रतिमा आपको नजर नहीं आती। मान्यता है कि देवी मंदिर की पवित्र लपटों में रहती हैं और अपने भक्तों का भला करती हैं। नेचर लवर हैं आप तो जरूर आइए मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर भागसू वाटरफॉल, जो एकदम नेचुरल है और देखने में शानदार लगता है। और क्या कुछ है यहाँ यानी धर्मशाला में घूमने और एक्सपीरियंस करने के लिए मस्ट, आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

शहर की इस अंधी दौड़ से थककर जब कदम यहां आते हैं, धर्मशाला की सर्द हवाओं में दिल के सारे जख्म भर जाते हैं। वो धौलाधार की ऊंची चोटियां जो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे हम कुदरत के सबसे करीब खड़े हैं। चाय के हरे बागानों से उठती वो सौंधी सी खुशबू का झोंका दे जाता है थकी हुई जिंदगी को एक नया और हसीन मौका। यहाँ बादलों का पहाड़ों से मिलना एक अलग ही समा बांधता है। जो एक बार आ जाए यहाँ, वो फिर वापस कहाँ जाना चाहता।

और कहीं जाना भी नहीं है आपको, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर, जहां खूबसूरत धर्मशाला के हर रंग से रूबरू करवा रही हूं आपको मैं, यानी नाज। धर्मशाला आएं और यहां की डल झील की सैर ना करें तो जनाब मान लीजिएगा कि ये सफर अधूरा ही रह गया। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, जरूर ले चलेंगे आपको हरे भरे देवदार के जंगलों से घिरी लगभग 1775 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद डल झील। झील के पास ही मौजूद है शिव मंदिर भी, जो इस जगह को एक पवित्र स्थान बना देता है।

वॉर मेमोरियल भी धर्मशाला में देखने लायक खास जगहों में से एक है, जो कि चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच मौजूद है और जहां मौजूद स्मारक की दीवारों पर शानदार नक्काशी के साथ शहीद जवानों के नाम आप पढ़ पाएंगे। इसके अलावा कांगड़ा से 32 किलोमीटर दूर मौजूद मसरूर रॉक कट मंदिर भी आपके लिए मौजूद है, जहां इंडो आर्यन शैली का बेहतरीन आर्किटेक्चर आप देखेंगे।

बेसिकली 15 रॉक कट मंदिरों का ये मेल है जो कि भगवान शिव, विष्णु, देवी और सौरा को समर्पित है। हिस्ट्री और नेचर लवर्स के लिए ये जगह वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। मैक्लोडगंज से 9 किलोमीटर दूर त्रियुंड भी आपके लिए एक बढ़िया डेस्टिनेशन है, जो आपको मून पीक और इंदिरा पास का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाती है। साथ ही पिकनिक मनाने के लिए आपको एक बढ़िया एनवायरनमेंट मुहैया करवाती है। सुनिए फिलहाल ये अगला ट्रैक, जिसके बाद मिटाएंगे अपनी भूख और प्यास धर्मशाला की स्पेशल और टेस्टी कुजीन के साथ।

और अब जैसा था आपसे वादा, चखेंगे साथ मिलकर धर्मशाला का खाना। तिब्बतियन और ऑथेंटिक हिमाचली या कांगड़ी कल्चर की झलक आपको यहाँ के खाने में मिलेगी, जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ मिलने वाली गर्मा गर्म मोमो की प्लेट तो आपको खानी ही है हर हाल में, साथ ही थुक्पा और शफाले भी, जो बेसिकली तिब्बतियन डिशेज ही है। हिमाचली स्वाद आप चखेंगे कांगड़ी धाम में, जो एक पारंपरिक थाली है यहाँ की और जिसे त्योहारों के मौकों पर पत्तलों पर परोसा जाता है। मदरा और माह की दाल आपको हिमाचल के स्वाद से रूबरू करवाएगी। साथ ही यहाँ मिलने वाली मशहूर बटर टी और हनी लेमन जिंजर टी को ऑर्डर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जनाब, क्योंकि ये धर्मशाला और हिमाचल की पहचान है। और मुझे ये पक्की उम्मीद है कि मेरे यानी नाज के साथ धर्मशाला का ये सफर आपने जरूर एंजॉय किया होगा। अपना एक्सपीरियंस और सुझाव जरूर शेयर कीजिएगा ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए। फिलहाल जाती हूँ मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात, ऐसे ही किसी नए शहर नई खूबसूरत तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड, हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: المنزل. हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है, हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को मुस्कान और जानकारी के मधुर गीतों के रंग से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली
1: और मैं हूँ रश्मि कुकरेती। सोनाली तुम्हें और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और एफएम गोल्ड दिल्ली के चैनल के सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: होठों में बात हम दबा कर नहीं आए, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल, है ना रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, और बड़ा मजेदार सवाल है आज का।
0: बिल्कुल, तो हमारा सवाल आपके साथ यही है कि रसोई में हर किसी ने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया है जिसमें उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है उससे, है ना? तो आपकी रसोई से जुड़ी पहली ऐसी कौन सी गलती है या ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगातार परेशान करती रही है? तो बस
1: कोई ऐसी मजेदार गलती लिख कर हमें भेज दीजिए हमारी ईमेल पर, और हमारी ईमेल है
0: fmgoldga@gmail.com।
1: तो जल्दी भेजिए अपना जवाब।

0: ज्वेल थीफ से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती, उन्हें हर पीढ़ी पढ़ती है और हर बार उनमें अपने समय की सच्चाई ढूंढ लेती है। हिंदी साहित्य में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम ऐसी रचनाकारों में लिया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, और उनकी लिखी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है सोनाली, उसने कहा था, वो कहानी तो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी उसको कहा जा सकता है। और मैं बताऊं सोनाली, वो केवल प्रेम कहानी नहीं है, वो तो वचन, कर्तव्य और त्याग की ऐसी कथा है जो सच में पाठकों का मन आज भी छू लेती है।
0: सच बात कह रही हैं आप रश्मि जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें, आज यानी 7 जुलाई 1883 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। और ना इन्होंने ना संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली और इतिहास के बहुत गहरी अध्ययन इन्होंने किया था और बहुत कम लिखा, लेकिन जो लिखा वो अमर हो गया है।
1: बिल्कुल, और उनका मानना था कि शब्द तभी सार्थक हैं जब उनमें जीवन की सच्चाई झलकती हो। और शायद यही कारण है कि इतना समय बीत गया, एक सदी से भी अधिक बीत गया, लेकिन उनके बाद उनकी रचनाएं उतनी ही ताजा महसूस होती हैं। साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि मनुष्य और समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम बनाया।
0: बिल्कुल सही रश्मि जी। और आज ना जब तेजी से समय बदल रहा है, तो ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर गुलेरी जी का जो साहित्य है ना, वो हमें याद दिलाता है कि संवेदनाएं कभी पुरानी नहीं होती, है ना। अच्छी रचनाएं समय के साथ आगे चलती रहती हैं। तो बस आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म उसने कहा था, इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और रश्मि जी आपको पता है हमारा जो सवाल था ना कि रसोई की सबसे मजेदार गलती आपकी क्या थी, तो बड़े प्यारे प्यारे और बहुत मजेदार से रिस्पांस हमें मिले हैं।
1: तो पहली मेल कौन सी है?
0: सबसे पहले तो देखिए नवीन भाटिया जी है मोतीनगर से, लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब चावल बनाने थे तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी थी और ना उसके उसमें फिर वो मीठे चावल बन गए और सबने उसे खाया,
1: यानी एक नया बिल्कुल डिश तैयार हो गया है ना।
0: और मतलब नवीन जी कितना अच्छा होता है, उसमें थोड़ी सी दूध डाल देते हल्की सी इलायची है ना।
1: और एक और मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं अलमास औरंगाबाद महाराष्ट्र से, वो अपना अनुभव बता रही है कि चाय गैस पर रखकर फूल गई और वो जल गई। भाई हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, शुरुआत में गड़बड़ हो ही जाती है।
0: बिल्कुल। और देखिए इसी तरह से खुशबू जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ हैं और ये हमें नमस्ते कह रही हैं। आपको भी हमारा नमस्कार खुशबू जी और शुक्रिया बने रहने के लिए। फिर हमारे साथ मनीषा जुड़ी हुई हैं और वो भी कह रही हैं कि उन्हें गाने अच्छे लगे और शुरुआत उन्हें अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपका साथ ही तो हमारे।
1: और सुनारी एक गलती मैं अपनी बताऊं जो मैंने की थी,
0: जरूर जरूर बिल्कुल।
1: जब मैंने पहली बार आटा गूंधा तो मैंने सच बताऊं इतना पानी डाल दिया कि वो मतलब बनाने लायक ही नहीं रहा, और फिर आटा डालना और पानी डालना वो सिलसिला जारी रहा और बिल्कुल अजीब सा ही हो गया
0: तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी का आटा हो गया होगा, है ना।
1: तो ऐसी गलतियां की हैं, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होता है, पहला कदम में तो गलतियां माफ भी की जा सकती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मेरी गलती क्या थी
1: जी?
0: भिंडी की सब्जी बनाने गई थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया।
1: वाह। तो हमें यकीन है आपने भी ऐसी कुछ मजेदार गलतियां जरूर की होंगी जब आपका सफर शुरू हुआ होगा मजेदार रसोई का। तो लिख भेजिए अपना जवाब, हमारा ईमेल एड्रेस है
0: fmgoldga@gmail.com।

0: तो चलिए रश्मि जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने अक्सर गौर किया है कि घर में बहस ज्यादातर किसी बड़ी बात पर नहीं होती, और क्या होता है कि जब रिश्तों की बात चलती है तो हम अक्सर उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा होता है। और इसी तरह एक रिश्ता होता है जीवन साथी का, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल। कभी आपने गौर किया है सोनाली कि जो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये मन में जगह बना लेती है। और कब साथ चलने वाले दो लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से आगे निकलने लगते हैं पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल सही बात है। और ना अक्सर ये हम देखते हैं कि हम लोग हिसाब किताब रखने लग जाते हैं, जबकि जीवन साथी का रिश्ता हिसाब रखने का नहीं है, बल्कि ये तो साथ निभाने का रिश्ता है ना। हर दिन बराबर नहीं होता, कभी एक मजबूत होता है तो कभी दूसरा मजबूत होता है। तो अक्सर हमने देखा है रश्मि जी कि कभी कोई थक जाए तो उसको बस और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आपके प्यार भरे साथ की, आपके कंधे की, है ना।
1: बिल्कुल, यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। क्योंकि भाई सोनाली, जिंदगी कोई प्रतियोगिता थोड़ी है जहां हर दिन जीतना जरूरी हो, और घर भी कोई मैदान नहीं है कि हमें अपनी बात भाई मनवा के ही दम

0: देखना है। घर तो वो जगह है जहाँ दो लोग मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हैं
1: और
0: एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाते हैं।
1: सच में, और देखती यही तो बात है कि जीवन साथी वही होता है जो हमारी हर बात से जरूरी नहीं है कि सहमत हो, है ना, बल्कि वो तो ऐसा रिश्ता है जो असहमति के बावजूद उस रिश्ते में मिठास बनाए रखता है।
0: मैं तो कहूंगी यही तो नमक है जिंदगी का।
1: सच बात
0: है ना। तो भाई रसोई की बात हो रही है, मैं देख रही हूँ सोनाली कभी तुम मीठे को लेकर आ रही हो तो कभी मैं नमक डाल रही हूँ, है ना, रिश्तों में भी। तो आज जरा अपने रिश्ते को भी एक मुस्कान दीजिए। हो सकता है किसी एक छोटी सी मैं की जगह अगर आप हम पर आ जाएं तो बहुत सारी सी अनकही दूरियां अपने आप मिट जाती है ना।
1: और आपको पता है बातों में हमारी नमक और मिठास क्यों आ रही है? सवाल भी तो उसी से जुड़ा है ना?
0: जी बिल्कुल।
1: तो हम अपने दोस्तों की बातें शुमार करेंगे, पहले ये गाना सुनते हैं।

0: देखिए, बाहों में फूल खिल रहे थे, फिल्म थी चुपके चुपके और स्वर थे लता मंगेशकर के साथ मुकेश के
1: जी। और जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब जो है लगातार आता चला जा रहा है, बहुत सारे जवाब हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो ये कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही है, भाई दूध उबल गया है और ये गलती आज तक होती रहती है, अक्सर ही भूल जाती हूँ मैं तो दूध गैस पर रखकर। भाई

0: मिल्क कुकर भी आता है ना कामायनी, तो आप वो ले सकती हैं और उस सिम पर अगर करेंगी तो मुझे लगता है दूध उबलेगा नहीं, है ना।
1: हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से ना मेरे पास भी मैसेज आया है, ये है श्यामली से राधा वासु, ये लिख रही है कि शादी के बाद हलवा बनाया था तो इनकी मम्मी जी ने बोला कि सूजी से 2 गुनी चीनी डालना, तो उन्होंने 4 गुनी डाल दी।
0: वाह,
1: तो वो हलवा तो नहीं बना, बर्फी जरूर बन गई। तो देखिए बना तो ना कुछ तो अच्छा ही बना।
0: और महेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से, और वो कह रहे हैं सोनाली जी रश्मि जी नमस्कार, अक्सर रसोई में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि चाय का कप चढ़ा कर आप भूल गए, या ऐसा ही कुछ हमारे घर में भी हुआ। भाई कुकर में दाल चढ़ाकर जो मेरी मिसेज हैं वो पार्क में नीचे चली गई और भूल गई कि कुकर में दाल चढ़ा रखी है। जब याद आया तो घर में आकर देखा कि भाई पूरी तरह से कुकर जल चुका था, और फिर बहुत बुरा लगा उनको। ये सारी गलतियां हो जाती, भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, कुकर के मामले में सावधान रहना चाहिए। रसोई में वैसे तो सावधानी से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम आग पर खेल रहे होते हैं ना।
1: बिल्कुल, आग से, आग से खेल रहे होते हैं।
0: हालांकि महिलाएं तो आग से खेल सकती हैं, उनको आता है।
1: हम जाबाजों को इसका ख्याल रखना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, बच्चे भी होते हैं, ध्यान से काम करना चाहिए।
1: अच्छा देखिए, हम बहुत रोचक रोचक सी बातें लेकर के अपने दोस्तों की यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, तो कुछ ना एक रोचक जानकारी मेरे पास भी है, थोड़ी सी अलग हटके है, है ना। और देखिए किताबों की लाइब्रेरी हमने हर जगह देखी है ना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी की बताने वाली हूँ, जानकारी देने वाली हूँ रश्मि जी और अपने दोस्तों के साथ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। और ना इसमें रुद्रप्रयाग का जो जिला है उसका एक छोटा सा गांव है मणिगुह गांव, ये अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक अनोखी पहचान की वजह से भी आजकल चर्चा में है।
0: भाई क्या है वो खूबसूरत बात,
1: आपको बताऊं, ये ना हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज है। और ना यहाँ एक नहीं बल्कि गांव के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने के लिए कई पुस्तक मंदिर बनाए गए हैं। कितना सुंदर शब्द है ना, पुस्तक मंदिर, है ना, जहाँ बच्चे युवा महिलाएं और बुजुर्ग अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं।
0: भाई वाह, ये तो जगह ऐसे लग रही है कि बहुत ही खूबसूरत जगह रही है, जहाँ पे पहाड़ों का साथ है और पहाड़ों के साथ साथ पुस्तकों का साथ है। इस गांव की केंद्रीय लाइब्रेरी में 20,000 से अधिक किताबें हैं, इनमें साहित्य विज्ञान इतिहास बच्चों की किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और कई भाषाओं का समृद्ध संग्रह भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात ये है सोनाली, यहाँ किताबें पढ़ने के लिए किसी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाता।
1: क्या बात है, देखिए बहुत सुंदर बात है ये। और आपको पता है ना रश्मि जी कि आजकल जब हम मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हमारा ज्यादातर समय ले लेती है,
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में जो मणिगुह गांव है ना, ये याद दिलाता है कि किताबों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी हमारी सोच को नई दिशा दे सकता है ना।
0: बिल्कुल।
1: और
0: कहते हैं ना कि सोनाली, जिस घर में किताबें होती हैं वहाँ विचार कभी बूढ़े नहीं होते। वाह, और शायद यही बात अब मणिगुह गांव की पहचान भी बन चुकी है।

0: प्रोफेसर फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।
1: और भाई अब एक गलती ऐसी आ चुकी है जो बता रहे हैं उग्रसेन यादव जी दिल्ली से, वो उन्होंने हमें मेल किया है भाई, वो कह रहे हैं चाय के बारे में, जब चाय पी रहे थे तब ये गलती होगी। और कहते हैं कि चाय पीने के लिए सोचा तो मैडम मेरी बिजी थी, तो मुझे लगा बना लेते हैं, सब पत्ती अदरक सब कुछ डाल दिया, लेकिन चीनी के बजाय क्या डाला उन्होंने पता है, नमक। तो फिर उसके बाद मैडम जी ने कहा भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, तो ये हो जाती है भाई गलतियां। और कौन सी मजेदार गलती है सोनाली तुम्हारे पास?
0: अच्छा मेरे पास ना देखिए, हमारे नियमित श्रोता है सुदर्शन मुखी जी और अनीता मुखी सिमरन मुखी है शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि गैस पर दूध रखकर भूल जाना और फिर दूध का गिर जाना ये एक आम भूल हो जाती है, और जिससे कभी कोई भूल नहीं है हुई इसका ये अर्थ हुआ कि उसने ना कभी कोई काम ही नहीं किया। ये भी सही बात है। अच्छा इन्होंने ना एक और चीज लिखी है कि भूल हमेशा काम करने वालों से ही होती है, तो बहुत सही बात है ना?
1: जी, जो काम कर भाई गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, है ना, वो तिफल क्या गिरे जो के घुटनों के बल चले। भाई गलती तो होती है लेकिन हम गलती से सीखते हैं आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम भी आगे बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ। ये मेल हमें आई है चौधरी वासी राजू अग्रवाल केशव, और ये कह रहे हैं कि आजकल मशीनी जमाना है, बिजली के उपकरण वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ी मोटर का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप कहाँ खो गए हैं साहब, हम तो मांग रहे हैं आपसे गलती आपकी की भाई क्या गलती की थी आपने।
0: अच्छा और देखिए कितना कभी कभी अच्छा लगता है ना रश्मि जी, कि हम कुछ करने जाते हैं और वो किसी के लिए बहुत प्यार की बात और बहुत पसंद की चीज हो जाती है। ये हुआ है हमारे लिए डी राजेश्वर राव जी के साथ में, इन्होंने ना रिक्वेस्ट की थी चुपके चुपके फिल्म का उन्हें गाना सुनना है
1: जी,
0: और देखिए संयोगवश हमने वही गाना बजाया था, है ना?
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: वो खुश भी हो
1: भाई, तुम्हारे दिमाग की मैं दाद देती हूँ सोनाली। पर मैं नहीं दे रही, जो दाद दे रहे हैं वो कह रहे हैं गौरी शंकर नागलोई से दाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रश्मि सोनाली आप दोनों बेटियों को मैं राम राम और कहता हूँ, आपके दिमाग की दाद देता हूँ, छोटे छोटे घरेलू सवाल पूछकर सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यानी कि तबीयत खुश हो जाती है, इसीलिए आपका कार्यक्रम सुनने के लिए इंतजार करते हैं। हम चाह रहे हैं साहब कि आप अपनी गलती बताते कि आपने कौन सी मजेदार गलती की थी रसोई में और उसके बाद आगे बन जाके बहुत अच्छे,
0: उसका एक बहुत अच्छा हमारे सामने
1: रसोई बन गए,
0: है ना, रसोई बन गए थे। तो अब हम अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं, है ना लक्ष्मी जी।
1: और भाई चाय की बात हुई थी तो भाई ग्रीन टी भी तो कोई चीज होती है, और ग्रीन टी से हम ग्रीन ड्राइव की ओर जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: चलते हैं।
1: हाँ तो लेके चलो,
0: बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है कि घर हो या शहर दोनों तभी खूबसूरत लगते हैं जब हमें उनमें हरियाली दिखती है ना। एक पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर भविष्य भी जोड़ जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने ना एक नई डिजिटल पहल शुरू की है।
1: और सोनाली हम सब तो दिल्ली में रहते हैं ना, और पर्यावरण की दिशा में अपना छोटा सा योगदान अगर हम देना चाहते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये ग्रीन ड्राइव पोर्टल शुरू किया है जिससे कि कोई भी नागरिक घर पर बैठे पौधारोपण कार्यक्रम से जुड़ सकता है।
0: कितनी अनोखी और अनूठी पहल है ना, और ना सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस पोर्टल पर आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पौधारोपण का स्लॉट बुक कर सकते हैं
1: जी।
0: तो अगर आपके घर पर, स्कूल में, कार्यालय या जो आपका रेसिडेंट वेलफेयर, जो आपका डेवलपमेंट एसोसिएशन है वहां पर, या हाउसिंग सोसाइटी में भी पौधे लगाने की जगह है, तो आपने वृक्ष रथ इसके माध्यम से दिल्ली सरकार निशुल्क पौधे आपके परिसर तक पहुंचाएगी।
1: वृक्ष रथ, वाह क्या बात है।
0: हाँ, और इसके अलावा ना एक और चीज है, वह नर्सरी लोकेटर। इसकी मदद से ना आप अपने सबसे नजदीकी सरकारी नर्सरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप मुफ्त में पौधे भी ले सकते हैं।
1: भाई मैं तो जरूर मुफ्त पौधे, जो ये निशुल्क पौधे हैं, जरूर लूंगी और अपनी सोसाइटी में लगाऊंगी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनकी जो पहल है एक पेड़ माँ के नाम, मैं ये जरूर करूंगी। जो तुमने मुझे बताया ना नर्सरी लोकेटर है, ये जरूर मैं नर्सरी ढूंढूंगी और लगाऊंगी, क्योंकि इस अभियान को जो जन भागीदारी का रूप देने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम।

0: मैं सुना ली। और इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं है बल्कि हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना भी है।
1: बिल्कुल। और ना एक चीज और बता दूं, कि अगर आप भी, मतलब हमारे दोस्त भी, हमारे श्रोता भी जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो एक इसकी वेबसाइट है जो है greendrive.delhi
0: वायु,
1: हाँ, वन महोत्सव, जी जी जी, तो वहाँ पर दिल्ली वन महोत्सव है, तो ये पूरा greendrive.delhivanmahotsav.in इस पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
0: क्योंकि भाई जुलाई का महीना चल रहा है, वन महोत्सव का समय है, पौधे लगाने का समय है, तो greendrive.delhivanmahotsav.in पर जाकर पूरी जानकारी हम ले सकते हैं। बस चलते चलते एक बात कहना चाहती हूँ सोनाली, एक पौधा लगाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खूबसूरत बात पता है क्या है, उसे बढ़ता हुआ देखना।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: क्योंकि पौधे सिर्फ लगाए नहीं जाते, अपने पन से पाले जाते हैं।
1: देखिए, ये तो एक सिलसिला है और इस सिलसिला को बढ़ाती जाएगी।

0: फिल्म हर जाए में हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: और सोनाली भाई, हम आते हैं जाते हैं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे, वो सुरक्षित रहें आते जाते। तो ये जो जिम्मेदारी है ये केवल कानून या पुलिस की नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे उसकी खुद की और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। क्या कहती हो तुम?
0: बिल्कुल सही आपने बात कही जी। हाँ। क्योंकि देखिए बच्चों को बचपन से, विशेषकर लड़कियों को, है ना, इसके बारे में जरूर सिखाना चाहिए। और सुरक्षित समाज की शुरुआत घर से होती है,
1: बिल्कुल,
0: बेटियों के साथ साथ बेटों को भी सम्मान, संवेदनशीलता और सम्मान का, समानता के संस्कार दिए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और सोनाली, सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा से नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण भी है जहां डर, हर महिला बिना डर के अपनी बात कह सके, पढ़ सके, काम कर सके, यात्रा कर सके,
0: बिल्कुल सही,
1: और अपने सपनों को पूरा कर सके।
0: बिल्कुल। और इसी कहते हैं कि जहां पर एक जिम्मेदार नागरिक होगा तो समाज भी उतना ही जिम्मेदार बनेगा, और तभी हमें उचित सहायता और कानून का साथ देना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल। भाई अगर किसी महिला के साथ आप अन्याय होता देखें या दुर्व्यवहार होता देखें तो आप चुप ना रहें, है ना, और कानून का साथ दें, और छोटी सी जागरूकता, समय पर की गई मदद और आपका संवेदनशील व्यवहार किसी का जीवन बदल सकता है। तो हम क्या कहोगी चलते चलते?
0: बस यही कहूंगी कि महिला सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। और महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी परिवार मजबूत होगा, समाज आगे बढ़ेगा
1: और देश सशक्त होगा।

0: कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो यहाँ।
1: और हमारे साथ राजेश राजी कह रहे हैं कि भाई एक बार मैंने खिचड़ी बनाई और वो बिल्कुल ख़राब हो गई, तो मैं अच्छे से तैयारी करके नहीं गया, ऐसा वो कह रहे हैं, गलती
2: है। और देखिए, आपने गौरी शंकर जी से कहा था ना कि आपने कुछ गलती बताइए, है ना। हाँ। तो हमें मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनसे चाय बनाते हुए करीब 20 साल हो गए हैं, शुरू में तो ख़राब बनी थी, बाद में आदत पड़ गई और अब उनकी घर वाली कहती है चाय आप ही बनाया करो, क्योंकि उनकी जैसी अच्छी चाय कोई और नहीं बनाता।
1: और महावीर कॉलोनी सोनीपत से संजय कुमार जी कह रहे हैं कि सब्जी बनाते हुए सब्जी में नमक तेज़ हो गया और मैंने सब्जी में फिर चीनी मिलाई ताकि बैलेंस। भाई वाह, ये तो कुछ गुजराती मतलब डिश बन गई है ना, व्यंजन बन गया है ना। तो हम कहेंगे अकेले अकेले मत जाइए, थोड़ा सा पत्नी से पूछ कर काम कीजिए, अच्छा रहेगा।
2: और इसी के साथ ना हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि बहुत बार ये होता है कि हम सब हंसी मजाक में बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो होता है कि हमारी जिंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो मोबाइल फोन में सिमट गया है। बैंक खाते से लेकर के UPI हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया, तस्वीरें और हमारे तमाम जरूरी दस्तावेज सब हमारे मोबाइल में हमारे हाथ में रहते हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल। और हालांकि पासवर्ड तो लगाते हैं, लेकिन सवाल केवल पासवर्ड का नहीं है बल्कि डिजिटल जिम्मेदारी का भी है। आज कई लोग अपनी जरूरी जानकारी किसी भरोसेमंद परिजन के साथ साझा करने, महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित रखने

0: जहां तक संभव हो डिजिटल नॉमिनी या लीगेसी जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। भाई देखो, इतने कठिन समय में परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: बिल्कुल, लेकिन ना इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पासवर्ड सबको बताते जाएं, है ना, बल्कि जरूरी यह है कि समय रहते अपनी डिजिटल जानकारी को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की योजना बना ली जाए, है ना।
0: बिल्कुल, आखिर हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहेज कर रखते हैं, तो अपनी डिजिटल विरासत को भी थोड़ा व्यवस्थित करके रखिए भाई। और हो सकता है ये छोटी सी तैयारी किसी मुश्किल समय में आपके अपनों के बहुत काम आ जाए, सुना ली है ना।

0: देखिए जाना तो हमारी बनता ही है, जिम्मेदारी भी बन जाती है,
1: क्योंकि समय कह रहा है कि समय कि हो चुका है,
0: जाइए
1: कल फिर आने के लिए।
0: बिल्कुल कल फिर आने के लिए। तो बस इस कार्यक्रम यानी घर आंगन से मुझे सोनाली
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के

0: बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security, and the maritime sector with both countries.

कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि उनके बारे में बात करने के लिए समय हमेशा कम ही पड़ जाता है। आज एक ऐसे ही अभिनेता की पुण्यतिथि है। कलाकार बेमिसाल में आज बात करेंगे दिलीप कुमार की, जिनका नाम भारतीय सिनेमा में बहुत ही आदर से लिया जाता है। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी रजनी के साथ। शुरुआत करते हैं नया दौर के गीत के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

11 दिसंबर 1922 को पेशावर में दिलीप कुमार का जन्म हुआ। उनके पिता लाला गुलाम सरवर अली खां एक बड़े फल व्यापारी थे जो कि पेशावर से मुंबई में आकर बस गए थे। दिलीप कुमार भी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़का जिसने कभी फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था, वो फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े नामों में शुमार हो गया। और जिस बेटे का नाम माता पिता ने यूसुफ खान रखा था, वो दिलीप कुमार कैसे बन गए? ये सारा किस्सा इस गीत के बाद जो हमने चुना है आपके लिए, फिल्म बाबुल से। आवाजें हैं शमशाद बेगम और तलत महमूद की।

बात है 40 के दशक की शुरुआत की। दिलीप कुमार के फैमिली फ्रेंड डॉक्टर मसानी देविका रानी को मिलने के लिए जाने वाले थे, तो वो अपने साथ यूसुफ खां को भी ले गए। देविका रानी अपनी फिल्म प्रोडक्शन के जरिए कई नए चेहरों को लॉन्च कर चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने यूसुफ खान को देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं। तो यूसुफ खान ने जवाब दिया कि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तब देविका रानी ने उन्हें साइन करने के लिए इतनी बड़ी रकम ऑफर की कि यूसुफ खान को लगा कि ये ईयरली सैलरी की बात हो रही है। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये सैलरी सालाना नहीं बल्कि एक महीने की है, तो यूसुफ खान ने उनका ऑफर कबूल कर लिया। इसके बाद देविका रानी ने कहा कि अगर आपका स्क्रीन नेम दिलीप कुमार हो तो कैसा रहेगा। उन दिनों अशोक कुमार के कारण कुमार नाम काफी ट्रेंड में था, और फिर अपने पिता के डर से भी यूसुफ खान अपना नाम बदलने के लिए राजी हो गए, और इस तरह फिल्म जगत को मिला अपना चमकता सितारा दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पर पिक्चराइज अगला गीत फिल्म यहूदी से हमने चुना है, आवाज है मुकेश की।

दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। इसके बाद आई प्रतिमा और मिलन भी असफल रही, मगर 1947 में आई जुगनू और शहीद ने दिलीप कुमार को घर घर में मशहूर कर दिया। इसके अगले सालों में आई मेला, अंदाज, जोगन, आरजू, बाबुल, दीदार, दाग और आन ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लंदन में भव्य प्रीमियर के साथ पूरे यूरोप में व्यापक रूप से रिलीज होने वाली आन पहली भारतीय फिल्म थी जो कि घरेलू और विदेशी स्तर पर भी तब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। आन फिल्म से ही अगला गीत सुनेंगे आप मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: देवदास जैसी दुखांत फिल्मों में आत्मा को छू जाने वाले अभिनय के कारण दिलीप कुमार को पहचान मिली ट्रेजेडी किंग की। हालांकि आजाद, कोहिनूर, लीडर और राम और श्याम जैसी फिल्मों में हल्के फुल्के कॉमिक किरदारों से दिलीप कुमार ने दर्शकों को चौंका दिया। दिलीप कुमार ने गायन का प्रशिक्षण भी लिया था और वो सितार वादन में भी पारंगत थे। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक गीत भी गाया था। 1960 में आई उनकी फिल्म मुगले आजम 15 वर्षों तक भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही, जिसका रिकॉर्ड तोड़ा शोले ने। 1961 में उन्होंने अपने भाई नासिर खां के साथ मिलकर गंगा जमुना फिल्म का निर्माण किया, जिसकी कहानी और पटकथा भी खुद दिलीप कुमार ने लिखी थी। इस फिल्म को हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और बोस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पॉल रिवरे सिल्वर बॉल पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा चेकोस्लोवाक आर्ट एकेडमी और कालोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष सम्मान इस फिल्म को प्रदान किया गया। गंगा जमुना से अगला गीत आपके लिए हमने चुना है, आवाज है मोहम्मद रफी की।
1: लागा गोरी गुजरिया से

टाशी दिलिक, मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 7 तारीख व दिन है मंगलवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए डीडी रूम में उपस्थित रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगीत सोनो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमंतो स्वर्गरी और सुश्री शिखा देका, मनपा उद्घोषक श्री तुतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गिनन धामू। आकाशवाणी तावंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. During talks in Jakarta, the two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security, and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: Hum development, security, technology, culture aur education har kshetra mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People-to-people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship and steadfast commitment to advancing India's national interests. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar

0: दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यह सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी

0: और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

0: हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के तहत आज सुनिए लामा लोपसंग सिरिंग और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लामा लोबसंग सिरिंग और साथियों से बाद भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजने वाले हैं, तो आइए अब आरंभ करते हैं विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत को। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आज आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवास में चंद आधुनिक असमिया गीत।

श्रोताओं, विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आप आनंद ले रहे हैं। भूपेन हजारिका की आवाज में चंद असमिया आधुनिक गीतों का लीजिए प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

দুঃখ মুকালিতে পশিমরে পর।

0: श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे भूपेन हजारिका की आवाज में चंद आधुनिक असमिया गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए एडवोकेट रिंचिन वांगमू से CDPO तवांग के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर के कार्य प्रणाली पर जागरूकता हेतु एक वक्तव्य।
1: आकाशवाणी तवांग सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को सबसे पहले नमस्कार। मैं एडवोकेट रिंचिन वांगमू आज मेरी बात कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को एक छोटा सा अवेयरनेस देना चाहूंगी। CDPO डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कीम है वन स्टॉप सेंटर, जहां पीड़ित महिलाओं को मदद दी जाती है। जैसे कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो हमारे ऑफिस में उसे कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि पहला है इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू। अगर कोई महिला हमारे ऑफिस तक तुरंत ना आ पाए तो वो 181 पर कॉल कर सकते हैं हमें, और हम आपके रेस्क्यू के लिए बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाते हैं। और दूसरा है लीगल एड एंड काउंसलिंग। और जो पीड़ित महिला हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम उसे लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं, उसके हक के बारे में बताते हैं, उसका क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा उसके बारे में बताते हैं। और अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट में जाने के लिए भी उसे मदद करते हैं। और तीसरा है पुलिस असिस्टेंस। अगर कोई घरेलू हिंसा का शिकार होता है, महिला को मारता है पीटता है, तो उस औरत को पुलिस के थ्रू भी बहुत सारा मदद मिलता है। अभी तक पुलिस वालों ने वन स्टॉप सेंटर के साथ मिलकर बहुत सारे केसेस डील किए हैं और पुलिस वालों ने भी वन स्टॉप सेंटर को बहुत ही मदद किया है। और चौथा है आपका मेडिकल असिस्टेंस। मेडिकल असिस्टेंस क्या होता है? अगर घरेलू हिंसा के चलते कोई पति अपने पत्नी पर हाथ उठाता है, उसे चोट लग जाता है।

0: तो हमारे ऑफिस में नर्स भी है, तो नर्स द्वारा उसका चेकअप किया जाता है। अगर वो ज्यादा सीरियस हो तो हमारे स्टाफ के द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में उसे ले जाया जाता है और उसका फर्दर चेकअप के लिए वहीं पर देखभाल किया जाता है। और है शेल्टर, अगर कोई महिला घरेलू हिंसा के चलते उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया हो तो उसे 5 दिन के लिए रहने का और खाने का बंदोबस्त हमारे ऑफिस में ही मिल जाता है। उस 5 दिनों के अंदर में हम केसेस को अच्छी तरह से देखते हैं और अगर केस कोर्ट में भेजना पड़े तो हम कोर्ट में भेजते हैं, और अगर दोनों मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो उसका एग्रीमेंट बनाकर हम उसे हमारे ऑफिस में ही केस को खत्म कर देते हैं। अंत में मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों का ये गलत फहमी होता है कि हमारे वन स्टॉप सेंटर जो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है यानी कि अमा छोपा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप सब जान ले कि हमारा ऑफिस CDPO ऑफिस के अंदर में एक स्कीम के तौर पर काम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अमा छोपा का ऑफिस नहीं है। ये हमारा अपना CDPO ब्रांच के अंदर में एक ऑफिस है जिसे हम कहते हैं वन स्टॉप सेंटर। थैंक यू।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना एडवोकेट रिंजिन वांगमो से CDPO तवंग के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर के कार्यप्रणाली पर जागरूकता हेतु एक वक्तव्य। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का आनंद लेने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
4: एडमिशन कराने? आता हुआ एक्टिव,
2: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो चलिए श्रोताओं, आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा हमने चुना है डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी के आवाजों में। गीत के बोल है कौसर मुनीर के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, अभी आपने ये आनंद लिया जब तक है जॉन फिल्म से नीति मोहन की आवाज में एक गीत का, जिसे शब्दों में पिरोया है गुलजार ने और संगीत से सवारा है एआर रहमान ने। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अगला नगमा प्रस्तुत है चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई के आवाज में। गीत को शब्दबद्ध किया है जयदीप सहानी ने और संगीतबद्ध सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओं, महिलाओं पर आधारित इन्हीं नगमों के साथ कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए श्रोताओं, अब प्रारंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी को। लीजिए प्रस्तुत है गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा, सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बागची के आवाजों में। रश्मि विराग द्वारा शब्दबद्ध इस गीत को संगीतबद्ध किया है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से विशाल दत्तलानी, पायल देव, किशोर कुमार और मेरियन के आवाजों में। गीत को शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी और अन्विता दत्त ने, तथा संगीत से सवारा है आरडी बर्मन और विशाल शेखर ने।

श्रोता हूँ, अभी आपने आनंद लिया नोटबुक फिल्म से कमाल खान के आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है कौशल किशोर ने और संगीत

सवारा है विशाल मिश्रा ने। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सत्यमेव जयते फिल्म से एक गीत आतिफ असलम और तुलसी कुमार के आवाजों में। गीत के बोल है कुमार के और संगीत रोचक कोहली का।

श्रोताओं, इस वक्त हम आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस आधुनिक नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से एक गीत विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के आवाजों में। गीत को शब्द दिया है कुमार ने और संगीत विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, अगला नगमा प्रस्तुत है कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में, जिसे संगीत में पिरोया है कनिष्क सेठ ने और बोल है शास्त्रीय, तथा यह गीत हमने चुना है जुग जुग जियो फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अगला नगमा प्रस्तुत है टू स्टेज फिल्म से, जिसे शब्दों में पिरोया है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से संवारा है शंकर एहसान लोई ने, और यह गीत है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में।

भूत फिल्म से श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे अखिल सचदेव और मशील गुजराल की आवाजों में एक गीत का, जिसे रचा व शब्दों माफ कीजिएगा जिसे शब्दों में पिरोया और संगीत से संवारा है अखिल सचदेव ने। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा प्रस्तुत है ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली अलवरेज की आवाजों में। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार है प्रीतम।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही FM 104 मेगाहर्ट्ज पर। समय संध्या के 4:30 होने वाले हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग के तहत आज आनंद लीजिए रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन का। राग है आलाप तथा तबले पर संगत दे रहे हैं श्री दुर्गा प्रसाद।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय तो संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बापिलू चाई तोसिक को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश के लवादिवांग वैली जिले में फ्लावरिंग प्लांट की एक नई प्रजाति आफियो राइजा चाउनाई की खोज की गई। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही 5 अन्य जिलों के लिए अगले 24 घंटों में बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में दुरंत कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और फीफा विश्व कप में अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इस बीच पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने देश के राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद अगले फीफा विश्व कप में वापसी न करने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं।

0: मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
0: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती दवाइयां इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की बापिलू चाय तोशिक को अरुणाचल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य चुना गया है। ये काउंसिल भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है जो आर्किटेक्चर के पेशे और शिक्षा को रेगुलेट करती है। इस उपलब्धि पर बापिलू चाय को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया में लिखा है कि आर्किटेक्चर के पेशे से जुड़ी भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था की एग्जीक्यूटिव कमेटी में चुना जाना एक खास राष्ट्रीय उपलब्धि है और ये उनकी पेशेवर उत्कृष्टता, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण देती है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में फ्लावरिंग प्लांट की एक नई प्रजाति ऑफियोराइजा चाउनाई की खोज की गई है। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के सम्मान में इस नई प्रजाति का नाम उप मुख्यमंत्री चाउना मैन के नाम पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से शोधकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का गहरा सम्मान महसूस हो रहा है कि शोधकर्ताओं ने इस नई खोज की गई प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तवांग, कुरुंग कुमे और शियोमी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित और नामसाई के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 दुरंत कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ावा देने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल

0: से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: फीफा विश्व कप फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजलिस स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने देश के राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद अगले फीफा विश्व कप में वापसी न करने की घोषणा की है। स्पेन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में अपना एकमात्र विश्व कप खिताब जीतने के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटे का समय दिया गया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौतों के क्रियान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है और देश के विकास को गति दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Appu Gapak. Prime Minister Narendra Modi held delegation level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, Trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the India-Indonesia comprehensive strategic partnership during talks in Jakarta. The two leaders witnessed the signing of several memorandums of understanding covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food, security and digital technology. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In the social media post, Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship and steadfast commitment to advancing India's national interests. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Gogze and Samir Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict, confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case on July 26, 2008. A series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए सिंगसुर अनी गोम्पा के अनी थुतन वांगमु और साथियों से संबा लंडुप और बरसे लमसल। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत सुनिए मन्यल विद्या निकेतन तावंग के 5वीं कक्षा के छात्र थुप्तन तेंजिन से अंग्रेजी भाषा की एक कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज शाम 7:11 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे एक रिश्ता फिल्म से चंद नगमों का। साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग आज शाम 7:25 पर। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए सैम बहादुर फिल्म से शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8:00, जिसमें शामिल रहेंगे जो जीता वही सिकंदर, अंदाज, मुकद्दर का सिकंदर, अखियों के जरोखों से तथा शोले फिल्मों से चंद नगमे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन आज रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 8 जुलाई 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना, जिसके तहत आप सुन पाएंगे चंद हिंदी भक्ति गीत पंडित जसराज के आवाज में। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत

आनंद लीजिए। मयूख हजारिका के आवाज में चंद आधुनिक असमिया फिल्मी गीत। कल दोपहर तीन बजकर तीस मिनट पर कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए। पीएम श्री जैन वी तावंग के 11वीं कक्षा के छात्रा सिरिंग ड्रामा से राष्ट्र निर्माण में एनएसएस की भूमिका विषय पर उनके विचार। महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत कल दोपहर 3:33 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे दोस्तानी फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी, महाराज फिल्म से मुनाली ठाकुर, निर्जा फिल्म से कविता सेठ, केदारनाथ फिल्म से देव नेगी तथा वेकअप सिट फिल्म से कविता सेठ के आवाज में चंद नगमों का। श्रोताओं कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत आनंद लीजिए। जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन, तुम मिले फिल्म से नीरज श्रीधर, क्रूक फिल्म से निखिल डिजोजा, थैंक गॉड फिल्म से जुबिन नौटियाल, जब वी मेट फिल्म से मोहित चौहान, शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान, बॉडीगार्ड फिल्म से एश किंग और क्लिंटन सेरेयो, यारियां फिल्म से अरिजीत सिंह, फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म से आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा तथा रंजना फिल्म से जावेद अली, कीर्ति सगातिया और पूजा एवी के आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 दैनिक मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम के तहत सुनिए प्रसिद्ध भारतीय आचार्य शांतिदेव द्वारा रचित अ गाइड टू बोधिसत्वास वे ऑफ लाइफ रचना पर आधारित शिक्षा का श्रृंखला, जिसे मनपा भाषा में अनुवादित एवं प्रस्तुत किया है परम पावन तुलको तेंजिन ग्योलमे रिंपोछे ने। श्री संगेटाशी से दैनिक मुख्य सूचना कल शाम 5:30 पर 5:45 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम नमछोई कलोप। कल शाम 6 लेरिम सेडा, शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए आनी यीशी पेमा और साथियों से दिमछक लामा छोपा। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए। फाइटर फिल्म से विशाल ददलानी और शेखर रवजानी के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम जरोखा के तहत अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम जेतुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए मुन्नील विद्या निकेतन तावंग के पांचवी कक्षा के छात्र थुपतन तंजिन से अंग्रेजी भाषा की एक कविता। कविता का शीर्षक है रन।
1: Hello everyone, myself Thupten Tenzing. I study in Manjul Vidyaniketan Tawang in class 5. Today I am here to recite a poem and my poem is Run. Run away from the city and into the sun, out of the country, run, run, run. Run in the raindrops, run in the trees, run little races with each little breeze. And my poet name is Mary Dont. Thank you.
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मुन्नील विद्या निकेतन तावंग के पांचवी कक्षा के छात्र थुपतन तंजिन से अंग्रेजी भाषा की एक कविता। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:11 हुए हैं। लीजिए अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आनंद लेंगे एक रिश्ता फिल्म से चंद नगमों का। तो लीजिए पहला नगमा प्रस्तुत है कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाजों में। इस फिल्म के गीतों को शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीतबद्ध नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, एक रिश्ता फिल्म का दूसरा नगमा लीजिए प्रस्तुत है उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में। इस गीत को भी शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीतबद्ध नदीम श्रवण ने।

0: 25 मिनट हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, जिसके तहत आज आप सुन पाएंगे सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज तवांग मठ के हिंदी शिक्षक शास्त्री लोबसंग पिंग्याल से परम पावन 14वें दलाई लामा के 4 प्रतिबद्धताओं पर एक वक्तव्य।
1: परम पावन जी के जो 4 मुख्य प्रतिबद्धताएं हैं संजीव रूप से हैं, उनकी पहली प्रतिबद्धता या हम संकल्प कह सकते हैं, परम पावन जी कहते हैं सर्वप्रथम मैं एक मनुष्य हूँ, एक मानव हूँ, एक मानव होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि समस्त मानव जगत में समस्त मानवों को समान रूप से एक ही रूप से सुखमय जीवन जीने का अधिकार है, और उस सुखमय जीवन का आधारभूत कहे या जल जो है मानवीय मूल्य जैसे कि करुणा, दया, आत्मानुशासन आदि, इन सब सदा सदगुण जो है मनुष्य के अंदर के जो हमारे अंदर निहित है, इन गुणों से मनुष्यों को अपने प्रवचन द्वारा, अपने उद्देश्यों के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के माध्यम से परम पावन जी लोगों को अवगत कराकर इस विश्व में शांति स्थापित करना ही परम पावन जी का पहला संकल्प या प्रतिबद्धता है। और उनकी दूसरी प्रतिबद्धता जो है, परम पावन जी कहते हैं कि दूसरे क्रम पर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, एक धार्मिक व्यक्ति होने के तौर पर मेरा ये कर्तव्य बनता है, यह मेरा दायित्व बनता है कि विश्व में जितने भी जो धर्म है उनके बीच परस्पर सौहार्द भाव और विभिन्न धर्म अभिलंबियों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव का उत्पन्न कराकर इस विश्व में सर्वधर्म संभाव की जो कल्पना है इस परिकल्पना को साकार करना ही परम पावन जी का दूसरा संकल्प प्रतिबद्धता है। और उनकी ये तीसरी प्रतिबद्धता जो है, परम पावन जी कहते हैं कि तीसरे क्रम पर मैं एक तिब्बती हूँ और तिब्बतियों का एक धर्म गुरु हूँ। तिब्बती और तिब्बतियों का धर्म गुरु होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि तिब्बत की संस्कृति, तिब्बत का धर्म, तिब्बत की सभ्यताएं, तिब्बत का पर्यावरण का संरक्षण करना, और आज तिब्बती लोग जो है मानसिक प्रताड़न से गुजर रहा है, बोध पीड़ा में है, तो उनके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को विश्व के स्तर में, विश्व के मंच में वकालत करके पूरे तिब्बतियों को न्याय पूर्वक अधिकार दिलाना पवन जी का तीसरी प्रतिबद्धता है। और उनकी चौथी प्रतिबद्धता जो है, पवन पावन जी कहते हैं कि मैं एक प्राचीन भारतीय विद्या का अनुयायी हूँ। उस दृष्टि से मेरा यह कर्तव्य बनता है जो आज भारतवर्ष से विलुप्त हो चुके, जो प्राचीन भारतीय विद्या है जो अमूल्य है, अतुल्य है, पहले जितने प्रासंगिक थे इस विश्व के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज विश्व को उसकी जरूरत है, तो मैं इस भारतीय प्राचीन विद्या जो है उसको भारतीयों के बीच में और खासकर भारतीय युवाओं के बीच में पुनर्जीवित करके विश्व शांति का निम्न रखने का जो संकल्प है, ये परम पावन जी की चौथी प्रतिबद्धता है। और मैं समझता हूँ कि उपरोक्त जो 4 प्रतिबद्धताएं हैं परम पावन जी की, ये जो है उनका हम सभी जगत वासियों की, सभी प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शन है जो अभूतपूर्व है। पहले किसने ऐसा मार्गदर्शन नहीं किया, इतिहास में कहीं नहीं मिलता है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन, ये अभूतपूर्व मार्गदर्शन कह सकता है। तो इस तरह के महान मार्गदर्शन का हमको अध्ययन कर अपने चित्त के अंतर में उसको उत्पन्न कर, अपने दैनिक जीवन में उसको प्रयोग कर, फिर अपने और दूसरों के जीवन को सार्थक जीवन बनाना चाहिए। और मैं अपने पहले विषय को यहाँ रखता हूँ, तो इसके साथ मैं अपने दूसरे विषय उसमें आऊंगा। परम पावन जी ने 2015 में धर्मशाला परम पावन जी के निजी आवास में उन्होंने हमारे तवांग मठ के भिक्षुओं से कहा था

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया एक रिश्ता फिल्म से चंदन नगमों का। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:00

आज भारत में आने के बाद हम तिब्बतियों ने हर क्षेत्र में विकास करना शुरू कर दिया है और आप मोनबाओं ने भी काफी विकास किया है और धर्म के क्षेत्र में भी बहुत विकास कर रहे हैं। वो वाकई प्रशंसनीय बात है, काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी बात है। और आपके मठाधीश रिंपोचे जी के साथ कुछ देर पहले जब मेरी चर्चा चल रही थी तब मैंने कहा पूरे हिमालय और तवांग में बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं, खासकर आपके तवांग मठ के शाखा के रूप में 16 या 17 की संख्या में छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं। उन सब को केवल एक छोटा सा बौद्ध मंदिर दर्शन या पूजा पाठ के केंद्र तक सीमित न रख के वहां पर उन सभी जगहों में बौद्ध धर्म के अध्यापन का केंद्र में अगर इन सब छोटे छोटे बौद्ध मंदिरों को तब्दील कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मैं फिर से आप भिक्षुओं से कहता हूं इस विषय में आप लोगों को सोचना है। आप लोगों को आपके जितने भी शाखा के रूप में जितने भी छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं वहां पर पुजारी के रूप में एक बौद्ध धर्म को जानने वाला भिक्षु को तैनात करना चाहिए और उसके माध्यम से ग्रामीण लोगों तक बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है पहुंचाना चाहिए। और जब ग्रामीण इलाके के जो ग्रामीण वासी जो है गांव में रहने वाले जो है और वहां के विद्यार्थियों के साथ उस भिक्षु का संबंध बढ़ेगा और बौद्ध धर्म के विषय में अध्यापन करते हुए बौद्ध धर्म की दिशा में आकर ग्रामीण इलाके के लोगों के अंदर कुछ विकास होता है या बौद्ध धर्म के मौलिक शिक्षा जो है उनको प्राप्त करने के बाद आपको और एक काम करना होगा, उन लोगों को आगे मार्गदर्शन करना, बौद्ध धर्म का अध्यापन करना। तो उसके लिए मेरे द्वारा संपादित एक ग्रंथ है जिसका नाम है बौद्ध विज्ञान तथा दर्शन सिद्धांत समुचे नंबे दाम तटकुंती, इसको पढ़ाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में बौद्ध धर्म के जो विज्ञान है बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके विषय में बात की है। इसके अंदर में पारंपरिक धर्म के विषय में नहीं है, लेकिन जैसा ही लोग इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे बौद्ध विज्ञान और बौद्ध सिद्धांत के विषय में जानेंगे बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक रूप से होंगे क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको जितना ज्यादा देखेंगे जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे जितना ज्यादा आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके अंदर में श्रद्धा जागेगी। ये मेरा अनुभव है, परम पावन जी कहता है कि ये मेरा अनुभव है, मैंने खुद इस बात को देखा है। इसलिए आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है और इसका अनुसरण करना है, परम पावन जी ने 2015 में कहे थे। और इसके साथ आगे कहते हुए उन्होंने कहा मुझे यह जानकर के अत्यंत खुशी हुई कि आप मनबा क्षेत्र के जो जितने भी मनबा वासी हैं उनके बीच आज बौद्ध भाषा के प्रति रुचि बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों ने तो उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब मैं बौद्ध भाषा को पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो अपनी तिब्बती भाषा का प्रचार बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऐसा गलत नहीं आप लोगों को नहीं लेना है, ऐसा आरोप मुझे एक आध बार लग भी चुका है। मैं बौद्ध भाषा जो है उसको पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ, आज इस जगत के अंदर में हमारी आज इस दुनिया की आबादी जो है 7 अरब से भी ज्यादा है और उन लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है हजारों है, हजार से भी ज्यादा। लेकिन बौद्ध धर्म के उल्लेख संपूर्ण रूप में न उल्लेख पूरी तरह से सब शुरू से अंत तक उल्लेख जो है केवल 2 भाषाओं में मिलता है, एक बोधी भाषा एक चीनी भाषा। लेकिन चीनी भाषा जो आज बहुत पुरानी हो चुकी है कोई भी उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में अगर बौद्ध धर्म को किसी भाषा के माध्यम से व्याख्यान कर सकते हैं तो केवल बोधी भाषा है। इसलिए अगर बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्मी लोग हो या बौद्ध धर्म को ठीक तरह से जानने की इच्छा रखते हो उन लोगों को बोधी भाषा की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं बौद्ध भाषा को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। और आगे 2014 में गंडन मठ दक्षिण भारत के हमारे महाविहार गंडन मठ में परम पावन जी ने हम मनबावासियों से कहा था 1959 में जब मैं अपने देश को छोड़ करके अपने

लोगों को चीनी दमनकारियों के हाथ में जोड़ करके भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे। तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मन दुख से भरा हुआ था। लेकिन भारत की सीमा तवांग के सरजमी में मैंने जैसा ही अपना चरण रखा, मेरी तबीयत में सुधार आने लगी और मेरे मन के बड़े बोझ जो है हट गया, मेरे मन में सुकून मिलना शुरू हो गया। तत्पश्चात भारत में आने के बाद मैंने अपना सर्वप्रथम धर्म प्रवचन जो है तवांग मठ में दिया था। उसी की स्मृति के लिए आपके अरुणाचल के सरकारी प्रतिनिधि एवं मनवासियों के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को अभिव्यक्त करता हूँ। आप लोगों को पता है छठे दलाई लामा जी का अवतरण तवांग में ही हुआ था, क्योंकि पांचवें दलाई लामा के साथ तवांग वासियों का गहरा संबंध था। और आज भी जब मैं तवांग में जाता हूँ तो उर्गीलिंग गोम्पा में जरूर जाता हूँ, क्योंकि वहां पे जाने पर, वहां पे पहुंचने पर मुझे एक विशेष शक्र का अपनापन का महसूस होता है। इस दृष्टि से हम और आपके बीच बहुत ही गहरा संबंध है और हम लोगों की संस्कृति, धर्म, परंपराएं, सभ्यता एक ही है। इस दृष्टि से धर्म संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना हम सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है, ये दायित्व बनता है हम लोगों का। हम सब लोगों को मिलकर के इसका संरक्षण करना, इसके लिए आप लोगों को जरूर जोर लगाना चाहिए। और पहले तिब्बत में भी, आज भारत में भी हमारे जितने भी तिब्बती मठ हैं वहां पर आपके मनबा सन्यासी विद्यार्थी जो है अध्ययनरत है, काफी गहराई से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप मनबा वासियों को इस दिशा में सोचते हुए और भी भिक्षुओं को भेजते रहना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो है हमारे तिब्बती विद्यालयों में भी आए, क्योंकि उन तिब्बती स्कूलों में, उन तिब्बती विद्यालयों में बौद्ध धर्म, बौद्ध भाषा के साथ ही साथ अंग्रेजी, हिंदी आदि आधुनिक शिक्षाओं को भी पढ़ाया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये लाभ जो है आपके बच्चों को भी मिले। वैसे भी आज विश्व की मांग है कि हम लोगों को अपने प्राचीन सांस्कृतिक विद्याओं के साथ में आधुनिक शिक्षाओं को भी बाखूबी जानना, ये आज की मांग है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने बच्चे जो है हमारे विद्यालयों में भी भेजें। और 2017 में तवांग मठ की इस विशाल कक्ष के अंदर में परम पावन जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन उपदेश दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आज रास्ते से आते हुए रास्ते के आसपास मुझे बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध मंदिर जो है और देवों की मूर्ति का निर्माण जगह जगह पर देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। ये बौद्ध धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और आपके जिला के जो विकास के मार्ग पर है इसका द्योतक है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ हम लोगों को बौद्ध मंदिर जो है बाहर नहीं बनाना है, अपने मन के अंदर में बनाना है, और देव मूर्तियां जो है बाहर नहीं, मन रूपी देवालय के अंदर में स्थापित करना चाहिए। जब हम मूर्तियों के, भगवान बुद्ध की या अपने मन में, अपने हृदय में अवलोकितेश्वर की मूर्ति की स्थापना कर और बुद्धि में मंजूश्री की स्थापना करेंगे, तब जा करके आपके जीवन सार्थक होंगे, दूसरों के जीवन सार्थक होगा। और इसी से ही पूरे विश्व भर में सुख शांति, अमन चैन की स्थापना होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अपने मन के अंदर में बौद्ध विहार को स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ जोड़ते हुए और एक बात कही थी जिसको मैं यहाँ पे कह देना उचित समझता हूँ। परम पावन जी ने ये कहा, हाल ही में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था, सैलापार करके जब आ रहे थे परम पावन जी तो उन्होंने बहुत सारे याक्स को देखा है वहां पे, तो उन यागों को देखते हुए उनके मन में एक खुशी मिली, क्योंकि ये तिब्बत का एक विशेष प्रकार का जीव है। लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद परम पावन जी कहते हैं कि मेरे मन में एक परेशानी उठी, मेरा मन परेशान होने लगा, क्योंकि इन सब यागों को जो है लोग हत्या कर देंगे, तब क्या होगा, ये सोच करके परम पावन जी का मन जो है विचलित हो गया। और आगे कहते हैं कि यहाँ तवांग में पहुंचने के बाद ये बात जानकर के बड़ा सुकून मिला मन को कि इन बेजुबान जान

जानवरों की रक्षा के लिए रखवाले के लिए एक संगठन है जो जीव हत्या को रोकने का काम करता है, पवन बावन जी ने ऐसा कहा था। और जब उनका लौटने का समय आया तब उन्होंने कहा था, जो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, उन्होंने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री जी ने मुझे वापस गांव में आने के लिए न्योता दिया है, आमंत्रित किया है, मैं जरूर आऊंगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कालचक्र का अभिषेक अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगा। तब परम बाबा जी ने कहा कि मुझे लगता है कि कालचक्र से बेहतर अगर हम बोधिचर्य अवतार के प्रवचन कर पाएंगे तो ठीक रहेंगे, इस विषय में मैं जरूर सोचूंगा, मैं बिल्कुल वापस लौट करके गांव में आऊंगा। तो हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये परम पावन जी स्वस्थ रहे और बारंबार गांव में पधारते रहे और उनके अमृत रूपी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होते रहे। और मैं अपने बात को संजय बनाते हुए अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ।

0: लौट करके ताव में आऊंगा। तो हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये परम पावन जी स्वस्थ रहे और बारम्बार ताव में पधारते रहे और उनके अमृत रूपी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होते रहे। और मैं अपने बात को संक्षेप बनाते हुए अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ। उपर्युक्त जितने भी बात मैंने यहाँ रखा है उसका संक्षेप रूप मेरा अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण छोटा है तो हो सकता है कि वहां तक ना पहुंचे, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ। परम पावन जी के जो अभी बात जो मैंने रखा उसका सार अगर बताएंगे तो परम पावन जी कहते हैं हम तवांग वासी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है, इसीलिए बौद्ध धर्म का संरक्षण संवर्धन करना हम लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है। और बौद्ध धर्म का संरक्षण या उसका संवर्धन करने के लिए बौद्ध धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के बौद्ध धर्म का न संरक्षण होगा न उसका संवर्धन होने का संभव है। और बौद्ध धर्म को अमूल चूल जानने के लिए बौद्ध भाषा की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों को बौद्ध भाषा का उचित ज्ञान भी होना है। बौद्ध भाषा को जानते हुए बौद्ध धर्म को आप अमूल चूल समझेंगे, अपने अंदर में समावेश करेंगे, फिर बौद्ध धर्म को जान लेना पर्याप्त नहीं है। बौद्ध धर्म का भावना करना, उसका दयन करना, उसका अभ्यास करना जरूरी होता है। तो बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हुए जब हमारे अंदर में करुणा भाव जागेगा और हमारा जीवन करुणामय होगा और दूसरों के लिए हम काम करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान करेंगे और इससे ही विश्व शांति की स्थापना होगा। और यही दलाई लामा का उद्देश्य है और दलाई लामा का मार्गदर्शन मैं समझता हूँ। और अभी हाल ही में जो एक वीडियो आ रहा है दलाई लामा जी का संदेश है, परम पावन जी कहते हैं कि मेरा जो अवतरण दिवस है इस अवसर पर आप सब लोग जो है मुझे अपनी ओर से कुछ न कुछ तोहफा या बेंट देने की इच्छा रखती होगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा या बेंट यह होगा कि अगर आप अपने मन में सद्भावना को जगाते हुए अपने जीवन को करुणामय बनाते हुए लोगों की यथासंभव मदद करेंगे, अगर मदद की संभावना ना हो तो कम से कम लोगों को परेशान न करना। अगर मेरी इस बात को आप अपने मन में रख करके अपने दैविक जीवन में उतार करके उसका पालन करेंगे तो मेरे लिए आपकी ओर से सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो इसलिए मैं इस बात को कहते हुए कि जो परम पावन जी का उद्देश्य जो है हर मनुष्य के अंदर में सद्भावना को जगाना, हमारे जीवन को करुणामय बनाना, इस विश्व को शांतिपूर्ण विश्व बनाना, इस उद्देश्य में हम सब लोगों को सहायक बन करके यथासंभव अपनी ओर से कोशिश करना चाहिए। और अंत में परम पावन जी के दीर्घ आयु अथवा उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति है तो मैं त्रिरत्न से प्रार्थना करते हुए अपना वक्त भी को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद
1: श्रोताओं। अभी आपने सुना सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज तवांग मठ के हिंदी शिक्षक शास्त्री लोबसंग तन्याल से परम पावन 14वें दलाई लामा के चार प्रतिबद्धताओं पर एक वक्तव्य। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे न केवल दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता को भी बल मिलेगा। जकार्ता में इंडोनेशिया सांसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सदियों पुराने हैं तथा दोनों देश समान लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी विश्वास और साझा भविष्य की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक दक्षिण की स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित किया। रणनीतिक विश्वास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा, आपदा एवं आपातकालीन तैयारी तथा ग्रेट निकोबार से मलक्का जलडमरू मध्य तक समुद्री सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना और शिक्षा आयुक्त अमजाद ताक ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक से मुलाकात की। बैठक में राज्य की समग्र शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा विशेष रूप से जारबोंग गवर्नमेंट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यपाल ने छात्रों एवं शिक्षकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षण प्रशासनिक तथा आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग से सुधारों के प्रयासों की सराहना करते हुए टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से लागू की गई तर्कसंगत शिक्षण स्थानांतरण प्रणाली की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा है कि ये पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षकों की समान तैनाती सुनिश्चित करेगी, जिससे शिक्षण परिणामों में सुधार होगा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत बनेगी। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज 21वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकार की प्रमुख पहलों, मंत्रिमंडल के निर्णयों, बजट घोषणाओं तथा अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से अभियान के तहत एक एक टीबी मरीज को गोद लेने का आग्रह किया है ताकि टीबी मुक्त अरुणाचल प्रदेश के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। स्मार्ट मीटरिंग की कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित चीफ इंजीनियर को कार्यों की प्रगति और बाधाओं की नियमित समीक्षा के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा वेंडर्स के साथ प्रत्येक माह दो बार बैठक आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंता सिंह ने आज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 के तहत प्रशिक्षित सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM द्वारा सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संचालित 3 महीने तक चले कौशल विकास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन अभ्यर्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तासिंग ने लिखा है कि ये उपलब्धि ग्रामीण युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तवांग के सहायक उपायुक्त सह टाउन मजिस्ट्रेट नावांग थोतन, इंजीनियर फुरफा लामू तथा शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने आज तवांग के नेहरू मार्केट, न्यू मार्केट और मेडिकल कॉलोनी में सिंगल यूज प्लास्टिक तथा 2 लीटर से कम की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाना शुरू करने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। अभियान के दौरान दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर जिला प्रशासन के आदेश के अनुपालन की जांच की गई। ये निरीक्षण जागरूकता अभियान का भी हिस्सा रहा, जिसके माध्यम से व्यापारियों और नागरिकों से प्लास्टिक प्रदूषण कम करने की जिला प्रशासन के अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की गई। ईटानगर मौसम विभाग ने आज

0: below 2 liters in capacity. During the drive, shops and commercial establishments were inspected to verify compliance with the district administration's order prohibiting sale, storage and use of banned plastic items. The inspection served as an awareness initiative, encouraging traders and citizens to actively support the district's mission of reducing plastic pollution. The Meteorological Center Itanagar has forecast an orange alert for Lower Siang, East Siang, Lower Dibang Valley, Lohit and Namsai districts. These districts are likely to receive thunderstorm with lightning and very heavy rain at isolated places. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:57 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कौमे तराने, जिसके तहत आज आप आनंद ले सकेंगे सैम बहादुर फिल्म से शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार की आवाजों में एक गीत का। गुलजार द्वारा रचित इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, सैम बहादुर फिल्म के इस नगमे के साथ कार्यक्रम कौमी तराना यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए कार्यक्रम आरंभ करते हैं पहले फरमाइशी नगमे के साथ, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से जतिन पंडित के आवाज में, जिसकी फरमाइशें किए हैं कोजागिरी कॉलोनी कोपरगांव के सुरेश मलोडे और वर्षा मलोडे ने तथा निवासा के अमोल लोखंडे और शारदा लोखंडे ने। इस गीत को शब्दबद्ध किया है नजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध जतिन ललित ने।

चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा से आया है हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा फरमाइश, जिसके तहत हम आनंद लेंगे अंदाज फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अगला फरमाइश प्रस्तुत है, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में, जिसे रचा है अंजान ने और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और इसकी फरमाइश की है मेरठ कैंटोनमेंट से दिग्दर्शन गौर और कविता गौर तथा मालवा रेडियो लिसनर एसोसिएशन रतलाम मध्य प्रदेश के जगदीश ढाकर मेमा, मिसेस रंजू भाई ढाकर, युवराज सिंह ढाकर और शिवांगी ढाकर ने।

श्रोताओं, इस वक्त हम आनंद ले रहे हैं आपके द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं अगला नगमा, अखियों के झरोखों से फिल्म से हेमलता की आवाज में। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है तोरोवल नवन शहर पंजाब के गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वानिका और वानी थांडी से। इस गीत को शब्दबद्ध एवं संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम नगमा प्रस्तुत है पद्मा टॉकीज नापा नगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मांगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह के फरमाइश पर, जो कि है शोले फिल्म से किशोर कुमार और मन्ना डे के आवाजों में। गीत को रचा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन ठीक 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तब तक के लिए आनंद लेते रहे इस अगले सदाबहार नगमे का।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का हर लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा, वहीं बेल्जियम और स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 ड्यूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए आज भारतीय टीम की जर्सी लॉन्च की गई और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज से क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हुआ।

0: तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल फीवर की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा, वहीं रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले बेल्जियम और स्पेन विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिएटल स्टेडियम में हुए मुकाबले में चार्ल्स डी किटलेरे के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बेल्जियम ने अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया। चार्ल्स ने मैच के 9वें मिनट में निकोलस रास्किन के क्रॉस को गोल में बदलते हुए बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन जल्द ही 31वें मिनट में मलिक टिलमैन की डिफ्लेक्टेड फ्री किक ने थिबाउट कोटुआ को गलत दिशा में भेज दिया और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। इसके तुरंत बाद डी किटलेरे ने एक शानदार हेडर लगाते हुए बेल्जियम को वापस 2-1 की बढ़त दिलाई। 57वें मिनट में वनाकेन ने शानदार लॉन्ग रेंज शॉट लगाते हुए टीम के लिए तीसरा गोल दागा और अंत में लुकाकू ने एक मौके का शानदार फायदा उठाते हुए टीम के लिए चौथा गोल किया और स्टॉपेज टाइम में बेल्जियम की जीत पक्की कर दी। वहीं दिन के पहले मुकाबले में डलास स्टेडियम में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पुर्तगाल की इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी समाप्त हो गया। मुकाबले से पहले उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी विश्व कप होगा। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अपने विश्व कप करियर में 27 मैच खेले और 11 गोल किए। स्पेन मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक नजर आया, लेकिन पुर्तगाल ने भी स्पेन की रणनीति का भरपूर जवाब दिया। दोनों टीम की तरफ से गोल करने के लगातार प्रयास किए गए, लेकिन सभी नाकाम रहे। अतिरिक्त समय समाप्त होने से कुछ देर पहले ही स्पेन ने निर्णायक हमला किया। मिकेल मेरिनो ने खाली जगह का फायदा उठाते हुए विजयी गोल किया और टीम का क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर दिया। अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि फीफा विश्व कप अब तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का दौर दर्शकों को देखने को मिलेगा। और इसी तरह फुटबॉल का फीवर भी अब सात समंदर पार तक लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फीफा फुटबॉल विश्व कप के खुमार की चर्चा की है। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए फुटबॉल फीफा विश्व कप का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल पूरी दुनिया में फुटबॉल फीवर जारी है और यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है।
2: आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है, यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहाँ भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूँ, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहाँ इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है, इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग।
0: तो मैन ऑफ द मैच ये भारतीय लोग और एक और मैन ऑफ द मैच अब भारत के लिए सजने को तैयार है, जहां भारत में भारत का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष ड्यूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।
3: ड्यूरंड कप टूर्नामेंट ने उन्हें फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया। इस वर्ष कुछ नई टीमें ड्यूरंड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रही। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी।
0: 25 जुलाई से ये प्रतियोगिता शुरू होगी और राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फुटबॉल लोगों को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है।

0: उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। फुटबॉल के खेल में भारत को विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इसी के लिए तैयार अभी से करना है।
1: तो भारत को अपनी तैयारियां करनी होंगी और राष्ट्रपति ने भी आखिरकार फीफा विश्व कप का जिक्र किया। और अब फीफा के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।
2: भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला में 0-1 से पिछड़ने के बाद आज रात ट्रेंट ब्रिज में मेजबान टीम के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में मेहमान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से श्रृंखला गंवाने के बाद उन्हें मैनचेस्टर में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। मैनचेस्टर में भारतीय गेंदबाजों के सामान्य प्रदर्शन ने टीम की चिंताएं बढ़ाई हैं। ऐसे में टीम अपनी गेंदबाजी लाइनअप को बेहतर करना चाहेगी, जिसके लिए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सपाट पिचों के आदि भारतीय बल्लेबाजों को भी इंग्लैंड के पिचों का अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट खुद को ढालने में मुश्किल पैदा कर रहा है। अभिषेक शर्मा को छोड़ दे तो अन्य बल्लेबाजों के खेल में अब तक वैसी लय नहीं नजर आई है। हालांकि कप्तान अय्यर और ईशान किशन ने कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वे मैच पर अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं। इस बीच युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद अब एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मेहमान टीम को सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में ये मैच जीतना होगा। T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है, लेकिन इस दौरे पर भारत का अब तक का खेल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में सभी क्रिकेट प्रेमियों को श्रेयस अय्यर की मेंस इन ब्लू से नॉटिंगहम में एक शानदार वापसी की उम्मीद होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें होंगी आज नॉटिंगहम की तरफ, जहां टीम वापसी करने के इरादे से उतरेगी। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए आज भारतीय टीम की जर्सी का अनावरण किया गया। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भारतीय दल के लिए जर्सी लॉन्च की। इस अवसर पर श्री मांडविया ने भरोसा जताया कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों की संख्या कम होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे।
3: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
1: वहीं पीटी उषा ने कहा कि ये सिर्फ एक जर्सी नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस जर्सी में खिलाड़ी 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें लेकर जा रहे हैं।
4: Today is much more than the unveiling of new kit. It marks the beginning of a journey. Every athlete standing here has earned the privilege of wearing the India jersey through years of hard work, discipline, sacrifice and determination. When you wear these colors, you carry the hopes and dreams of more than 1.4 billion Indians.
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जबकि गुरविंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर और मुरली शिवशंकर जैसे कई राष्ट्र रिकॉर्डधारी खिलाड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 पदक जीते थे। हालांकि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों की संख्या को कुछ कम किया गया है। और अब बात करते हैं विश्व के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में से एक, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की, जो इंग्लैंड में खेला जा रहा है और आज से क्वार्टर फाइनल का दौर शुरू हो गया है। तो इन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पे ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष, क्या कुछ ताजा अपडेट है, किन किन खिलाड़ियों ने जगह बना ली है अंतिम 8 में?
5: देखिए शक्ति, एक ये जो बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो 1877 में शुरू हुआ और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में की अगर बात करें तो यानिक

हिनर जो है वो मुकाबला जीत चुके हैं जेएल स्ट्रफ के सामने 7-5, 7-6, 6-3 से, और उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है। जोकोविच का जो मुकाबला है वो फेलिक्स ऑगर से अभी कुछ ही देर बाद खेला जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जो मुकाबला एक कल सस्पेंड हो गया था विंबलडन कर्फ्यू के चलते, विंबलडन कर्फ्यू मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे रात 11 बजे के बाद विंबलडन का ये नियम है कि कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा ताकि वहां के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनको शोर और लाइट की वजह से परेशानी ना हो। तो वो ज्वेरेव और ज़िरिलेहका के बीच मुकाबला अभी

0: मुकाबले खेले गए। पुरुष सिंगल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को 7-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। चेकिया के जेरी लेहिका और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होने वाला मुकाबला रद्द हो गया। ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 5-7, 6-3, 6-4, 4-6 और 6-7 से हराया। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले 10 जुलाई को खेले जाएंगे, वहीं फाइनल 12 जुलाई को होगा। महिला सिंगल्स में चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अमेरिका की मेडिसन कीज को 6-4, 7-6 से हरा दिया। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले 9 जुलाई को और फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष चलते चलते हमको ये भी बता दीजिए कि आज के मुकाबलों की बात तो रही, कल कौन कौन से अहम मुकाबले होने हैं प्रतियोगिता में।
2: जी, कल के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जो टेलर फ्रिट्स का मुकाबला है वो जिरी लेहका और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच जो मुकाबला चल रहा है इसके विजेता से होगा, और एक मैच जो है वो कोबोली और आर्थर फेरी उसमें सामने आमने सामने खेलते नजर आएंगे। महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और एलिस मार्टिन खेलेंगे और मार्टा कोत्स्युक और जैस्मिन पलोनी का भी मुकाबला होगा। एक ताजा अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि कोको गॉफ ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
1: जी बिल्कुल, तो कोको गॉफ ने अपनी पहली एंट्री फिक्स कर दी है। और अब बात करते हैं आज के जन्मदिन विशेष की, जो है महेंद्र सिंह धोनी का, यानी 7 जुलाई। और इस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। 45 वर्ष के आज धोनी हो गए हैं। दुनिया के दिग्गज ने इस खिलाड़ियों की नेतृत्व क्षमता का लोहा माना है।
3: बहुत कैप्टन आए हैं, बहुत कैप्टन आएंगे, लेकिन एमएस धोनी की कैप्टनसी या कैप्टनसी रिकॉर्ड को मैच करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन क्रिकेट में आगे कर पाएगा।
4: देयर इज ओनली वन बॉस हियर एंड दैट बॉस इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड हिज नेम इज महेंद्र सिंह धोनी।
5: आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया जो उसने देश के लिए किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू
6: एमएस धोनी की जगह कोई भी खिलाड़ी खेलने आएगा ना, वो उनसे बेहतर कप्तानी नहीं कर पाए।
7: माही, आई थिंक यू कैन बी रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन with this Indian cricket team.
8: For me, he's always going to be my captain because I started my career under him.
9: Even Musharraf told me one day, I said, yaar, tumne isko pakad kahan se leta hai? To chhakka hi maarta hai standard. Maine kaha, yes, I was surprised that itna taakat kahan se aata hai? Kahin se bhi utha ke chhakka maar.
10: Then now, you see, he's the most successful Indian captain, having all three ICC trophies. It's the best captain India has seen.
11: A producer told me, I've just seen this man bat. He's got long hair. He says he walks like a bull. He bats like he owns the place. Forget everybody. Remember MS Dhoni.
1: तो भारत के लिए 2007 में T20 विश्व कप का खिताब, 2011 में 28 साल का इंतजार खत्म हुए, 100 भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट का खिताब और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, सब कुछ भारत को इस खिलाड़ी ने दिलाया। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको एक कार्यक्रम कैसा लगा? sportscan.air@gmail.com पे हमें अपनी राय भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
13: भारत विस्तारवाद नहीं

0: नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
0: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
0: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू

0: newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
4: भारत विस्तारवाद नहीं,